एसोस एलजी ले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज। अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी

ब्रह्मा मुरारिस्तिपुरन्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भ।

एसएस एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हरेक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड।